0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के मिशन के बारे चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया भर में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से घर ढह जाते और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। लोग बेघर हो जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो और लिम्पोपो क्षेत्र में रहने वाले लोग हर वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ से लगातार प्रभावित होते हैं। वहां प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धर्म बहनें पिछले एक दशक से समर्पित भाव से सेवा कर रही हैं। जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है, धर्म बहनें तुरंत राहत और सेवा कार्यों में जुट जाती हैं और पीड़ित परिवारों तक भोजन, आवश्यक सामग्री एवं अन्य ठोस सहायता पहुंचाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करती हैं। पिछले कुछ सालों में उनका मिशन देश के कई प्रांतों में फैल गया है, जिसमें मापुटो, गाजा, तेते और नकाला शामिल हैं। धर्म बहनें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवा और प्रेरिताई कार्यों के माध्यम से सेवा करती हैं। साथ ही अनाथ और कमजोर बच्चों, बुजुर्गों, कुपोषित लोगों और एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। वे समग्र मानव विकास को बढ़ावा देती और मुश्किलों का सामना कर रहे समुदायों में उम्मीद जगाने के लिए काम करती हैं। धर्म बहनें समाज के सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने, पिछड़े लोगों तक पहुंचने और हर इंसान की गरिमा को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं। रीजनल सुपीरियर सिस्टर लीजा अल्बर्टो मुयांगा ने जुलाई में वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जाय जाय जिले के गजा प्रांत के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कई समुदायों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बढ़ते पानी ने उनके आसपास के माहौल को असुरक्षित बना दिया है। इन परिस्थितियों के जवाब में धर्म बहनों ने मुश्किल हालात में रहने वालों की मदद करना शुरू किया है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को शरण स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है और धर्म बहनों ने अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों का पहचान किया है और शरण लेने वाले लगभग 1600 बेघर लोगों की मदद कर रही हैं। कई लोग अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ला पाए। अपने घर, सामान और रोजी रोटी के साधन खोने के बाद वे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। आवश्यकता को समझते हुए धर्म बहनें पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं। अपने कॉन्वेंट में खाना बनाकर उसे केंद्रों तक पहुँचाती और बेघर परिवारों में बांटती हैं। मानवता का यह काम सिर्फ धर्म बहनों तक सीमित नहीं है। उनके समर्पण और दया से प्रेरित होकर कई स्थानीय महिलाएं उनकी कोशिशों में शामिल हो गई हैं और खाना बनाने तथा उन्हें बांटने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपना समय दे रही हैं। धर्म बहनों ने खाने और रहने की जगह के अलावा दूसरी आवश्यकताओं जैसे साफ सफाई की चीजें और कपड़ों का इंतजाम एवं पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। शरण स्थानों पर गद्दे बिछाए ताकि परिवार बाढ़ का पानी कम होने और जीवन फिर शुरू करने का इंतजार करते हुए आराम कर सकें। वे स्थानीय समुदायों और सहभागी संगठनों के बीच भी जागरूकता फैलाती हैं और सबसे आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद की अपील करती हैं। सिस्टर लीजा कहती हैं, शरण केंद्रों में धम्म बहने बेघर परिवारों की चिंताओं को सुनने और उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए समय निकालती हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों को राहत मिलता है और उनका संघर्ष आसान हो जाता है। दुख की इस घड़ी में धम्म बहनों की उपस्थिति आशा की किरण बन गई है। उनकी प्रतिबद्धता उनके करिश्मे को दर्शाती है, जिसमें वे हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती हैं। जहाँ निराशा हो वहाँ सम्मान बहाल करती हैं। इस तरह प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम्म बहनों के कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी छोटी सी मदद और प्रार्थना अनेक लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जला सकती है। प्रभु हमें जरूरतमंदों की सेवा करने और उनके दुख में सहभागी होने का अवसर देते हैं। अतः आइए हम भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कर मानवता एवं प्रेम का संदेश फैलाएं। यही सच्ची ख्रिस्ती भावना है जो हमें प्रभु के प्रेम को कर्मों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम में हम प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम्म बहनों की सेवा के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीन मासिवो SPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्षमा। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, क्षमाशीलता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक दिव्य गुण माना जाता है और जहाँ तक मुझे पता है विश्व के सभी धर्म इसका समर्थन करते हैं। अक्सर क्षमा सर्वोत्तम कृत्य होता है। यह आप पर से एक बोझ हटा देता है जिससे आप हल्का महसूस करते हैं। परंतु क्षमा करना सदैव आसान नहीं होता, यह सीधे आपके अहम पर वार करता है। जब कोई और आपसे क्षमा याचना करता है तब आप संभवतः क्षमा कर देते हैं, परंतु आप स्वयं को आसानी से क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं? स्वयं पर इतना निर्दयी न बनें, क्षमाशील बनें। स्वयं से शुरू करें, अपने आप के साथ स्नेह और करुणामय बनें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका क्षमा।
1: अब आज छुट्टी के दिन दिन भर पेपर ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम करना है आज?
2: शोभा, तुम भी ना, लगता है तुम्हें मेरी छुट्टी का दिन पसंद नहीं है। तभी तो मेरी छुट्टी के दिन आराम करना तुम्हें अखर रहा।
1: क्या बात करते हैं आप भी।
2: नहीं नहीं अगर तुम कहो तो मैं तो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहकर तो देखो।
1: मुझे क्या पड़ी है आपको छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेजूं। मैं तो ये कह रही थी कि बाजार वगैरह चलना है क्या, कुछ सामान खरीदना है कि नहीं?
2: तो ऐसा क्यों नहीं कहती तुम?
1: चलो, आपके समझ में आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है।
2: ओहो, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता?
1: मेरा ये मतलब नहीं था।
2: फिर
1: आपकी समझदारी तो बहुत अच्छी है, जिसमें सब कुछ जल्दी समझ आता है ना।
2: तुम्हारे लाडले संकेत के समझ में भी कुछ नहीं आता।
1: हाय, अब क्या किया है उसने?
2: अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर उसे कुछ करने में समय ही कितना लगता है। अब उस दिन की बात ले लो, क्या जरूरत थी संकेत को पंडित जी की लड़की को छेड़ने की? क्यों छेड़ा था उसने?
1: आप भी कमाल करते हैं। अरे, उसने लड़की को कहाँ छेड़ा था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो लड़की बता सकती है।

0: जगन्नाथ जी की। आखिर उनका लड़का तो सक्सेना जी की लड़की को लेकर भाग गया, मगर फिर भी वो तो सर उठाए घूमते हैं ना।
1: तुम औरतों में यही आदत सबसे बेकार होती है,
0: कौन सी आदत होती है?
1: यही अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को बताना। तुम क्या समझती हो, क्या दूसरे की गलती बताने से अपनी गलती छिप जाती
0: मैं
1: है?
0: अपनी गलती छिपा नहीं रही हूं, मैं तो दूसरों की बात बता रही हूं
1: ये
0: बस।
1: आदत बंद कर दो तुम। इससे ही हमारे बच्चों को शह मिली है और वे यही सोचकर गलत काम को निसंकोच करते हैं कि दूसरे भी तो ऐसा ही करते हैं। वो तो गनीमत समझो कि मैंने संकेत से उस लड़की को माफी मांगने को कहा तो राजी हो गया। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी और पंडित जी की लड़की दोनों ने ही संकेत को क्षमा कर दिया, वरना अगर वे लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते तो हमारी इज्जत क्या रह जाती।
0: ये बात तो सच है, बेचारे पंडित जी बहुत ही सज्जन आदमी हैं, वरना उनकी जगह कोई दूसरा होता तो संकेत को तो क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी।
1: वही तो, ये तो पंडित जी की सज्जनता ही थी जो उन्होंने संकेत को क्षमा कर मामले को ठंडा कर दिया। वरना उनकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करके ही मानता।
0: अब यहाँ भी देख लो, आप में और पंडित जी में कितना अंतर है।
1: अब आदमी आदमी में स्वभाव का फर्क तो होता ही है। चलो, तुम्हारे बाजार का क्या काम है निपटा देते हैं।

0: अच्छा, शुक्ला भाई साहब, नमस्कार, आइए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: भाभी,
0: भाभी,
1: नमस्कार। कहाँ है श्रीवास बाबू?
0: अंदर है ना, आइए। अरे अरे, जूते चप्पल चलेंगे, ऐसे ही आ जाइए आप तो।
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: क्या हो गया श्रीवास बाबू? सुना था 2 दिन आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे।
3: हाँ, रहना पड़ा शुक्ला जी।
1: अब कैसे हैं आप?
3: अब तो ठीक हूँ शुक्ला जी, ईश्वर की दया है।
0: वो तो बच गए भाई साहब, वरना न जाने क्या हो जाता।
1: आखिर हुआ क्या था बहन जी?
2: कोई बड़ी बात हो गई थी।
0: अब बड़ी घटना ही समझो। हुआ ये था कि हमारी बेटी पलक को एक लड़के ने छेड़ दिया, फिर वह अक्सर पलक को परेशान करने लगा था। तब पलक ने इनको बताया ये सब। जब लड़के को इनको पता हो जाने के बारे में पता चला, तो वो आकर पलक और इनसे माफी मांग रहा था। पलक और मैं तो उसे क्षमा कर देने के पक्ष में ही थे भाई साहब,
1: हाँ, ऐसी बातों को तुरंत निपटा लेना चाहिए।
0: मगर ये उस लड़के को क्षमा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये तो इतने गुस्से में भरे थे कि सीधे थाने जाकर ही सांस ली और उस लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
2: हे भगवान, फिर?
0: फिर क्या, लड़की का मामला था भैया। फिर इन्होंने अपने विधायक से भी थाने पर फोन करवाया था और पुलिस को उस लड़के को हवालात में बंद करना ही पड़ा था।
1: फिर लड़के वालों ने क्या कहा?
0: अरे, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इनसे ये कहा कि आपके लड़के ने भी तो पंडित जी की लड़की को दोस्तों के साथ मिलकर छेड़ा था, और आपके लड़के की लड़की और उसके बाप से क्षमा मांगने पर उन दोनों बाप बेटी ने भी तो आपके लड़के को माफ कर दिया था ना, तो आप भी बच्चे की गलती समझकर भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उसे।
2: हाँ, और क्या, किस किस से बुराई लेना।
0: यही मैंने भी समझाया था इन्हें, मगर ये किसी की सुने तब ना, ये नहीं माने। इन्होंने उस लड़के को क्षमा नहीं किया और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उस लड़के को पुलिस से पिटवा कर हवालात में बंद करवा दिया था इन्होंने।
2: ओ,
0: जब लड़के के मामा को ये सब पता चला, तो 3 दिन पहले उसने इनको सड़क पर रोक लिया था और उन्हें संकेत के माफी मांगने और माफ कर दिए जाने की बात याद दिलाई थी। फिर इनसे पूछा कि क्या ऐसी क्षमा ये उसके भांजे को नहीं दे सकते थे। जब इनके बच्चे को किसी ने क्षमा कर दिया, तो क्या ये भी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? क्यों राधा?
1: बिल्कुल कर सकते थे।
0: बस इसी बात पर लड़के के मामा और उसके साथियों ने इनकी पिटाई करवा दी। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा इन्हें, नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ और कैसी कैसी चोटें आती इनको।
1: बुरा मत मानना श्रीवास बाबू, अगर आपके बेटे को किसी ने क्षमा कर दिया था तो आपको भी उस लड़के को माफ कर देना था, मगर आपने ऐसा न करके उसे हवालत की हवा खिला दी।
2: ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, कि आप किसी को माफ करेंगे तो आपको भी कोई माफ करेगा।
1: हाँ, अगर आप किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी गलती पर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्षमा मिली है तो आप भी किसी को क्षमा कीजिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली बात है।
0: यही बात मैंने भी कही थी इनसे, मगर ये नहीं माने। पर शायद अब तो इनको भी सबक मिल गया।

0: होगा, और अब ये भी यही करेंगे, क्यों जी?
1: बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा के बदले क्षमा में ही यकीन रखता हूँ।
2: क्षमा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनों के मिशन के बारे चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया भर में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से घर ढह जाते और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। लोग बेघर हो जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो और लिम्पोपो क्षेत्र में रहने वाले लोग हर वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ से लगातार प्रभावित होते हैं। वहाँ प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनें पिछले एक दशक से समर्पित भाव से सेवा कर रही हैं। जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है, धम बहनें तुरंत राहत और सेवा कार्यों में जुट जाती हैं और पीड़ित परिवारों तक भोजन, आवश्यक सामग्री एवं अन्य ठोस सहायता पहुंचाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करती हैं। पिछले कुछ सालों में उनका मिशन देश के कई प्रांतों में फैल गया है, जिसमें मापुटो, गाजा, तेते और नकाला शामिल हैं। धम बहने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवा और प्रेरिताई कार्यों के माध्यम से सेवा करती हैं। साथ ही अनाथ और कमजोर बच्चों, बुजुर्गों, कुपोषित लोगों और एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। वे समग्र मानव विकास को बढ़ावा देती और मुश्किलों का सामना कर रहे समुदायों में उम्मीद जगाने के लिए काम करती हैं। धम बहने समाज के सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने, पिछड़े लोगों तक पहुंचने और हर इंसान की गरिमा को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं। रीजनल सुपीरियर सिस्टर लीजा अल्बर्टो मुयांगा ने जुलाई में वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जाय जाय जिले के गजा प्रांत के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कई समुदायों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बढ़ते पानी ने उनके आसपास के माहौल को असुरक्षित बना दिया है। इन परिस्थितियों के जवाब में धम बहनों ने मुश्किल हालात में रहने वालों की मदद करना शुरू किया है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को शरण स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है और धम बहनों ने अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों का पहचान किया है और शरण लेने वाले लगभग 1600 बेघर लोगों की मदद कर रही हैं। कई लोग अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ला पाए। अपने घर, सामान और रोजी रोटी के साधन खोने के बाद वे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। आवश्यकता को समझते हुए धम बहनें पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं, अपने कॉन्वेंट में खाना बनाकर उसे केंद्रों तक पहुँचाती और बेघर परिवारों में बांटती हैं। मानवता का यह काम सिर्फ धम बहनों तक सीमित नहीं है। उनके समर्पण और दया से प्रेरित होकर कई स्थानीय महिलाएं उनकी कोशिशों में शामिल हो गई हैं और खाना बनाने तथा उन्हें बांटने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपना समय दे रही हैं। धम बहनों ने खाने और रहने की जगह के अलावा दूसरी आवश्यकताओं जैसे साफ सफाई की चीजें और कपड़ों का इंतजाम एवं पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। शरण स्थानों पर गद्दे बिछाए ताकि परिवार बाढ़ का पानी कम होने और जीवन फिर शुरू करने का इंतजार करते हुए आराम कर सकें। वे स्थानीय समुदायों और सहभागी संगठनों के बीच भी जागरूकता फैलाती हैं और सबसे आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद की अपील करती हैं। सिस्टर लीजा कहती हैं, शरण केंद्रों में धर्म बहने बेघर परिवारों की चिंताओं को सुनने और उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए समय निकालती हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों को राहत मिलता है और उनका संघर्ष आसान हो जाता है। दुख की इस घड़ी में धर्म बहनों की उपस्थिति आशा की किरण बन गई है। उनकी प्रतिबद्धता उनके करिश्मे को दर्शाती हैं, जिसमें वे हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती हैं। जहां निराशा हो वहां सम्मान बहाल करती हैं। इस तरह प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी छोटी सी मदद और प्रार्थना अनेक लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जला सकती है। प्रभु हमें जरूरतमंदों की सेवा करने और उनके दुख में सहभागी होने का अवसर देते हैं। अतः आइए हम भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कर मानवता एवं प्रेम का संदेश फैलाएं। यही सच्ची ख्रिस्ते भावना है जो हमें प्रभु के प्रेम को कर्मों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम में हम प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धर्म बहनों की सेवा के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीन मासिवो SPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्षमा। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, क्षमाशीलता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक दिव्य गुण माना जाता है और जहाँ तक मुझे पता है विश्व के सभी धर्म इसका समर्थन करते हैं। अक्सर क्षमा सर्वोत्तम कृत्य होता है। यह आप पर से एक बोझ हटा देता है जिसे आप हल्का महसूस करते हैं। परंतु क्षमा करना सदैव आसान नहीं होता, यह सीधे आपके अहम पर वार करता है। जब कोई और आपसे क्षमा याचना करता है तब आप संभवतः क्षमा कर देते हैं, परंतु आप स्वयं को आसानी से क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं? स्वयं पर इतना निर्दयी न बने, क्षमाशील बने। स्वयं से शुरू करें, अपने आप के साथ स्नेह और करुणामय बने। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका क्षमा।
1: अब आज छुट्टी के दिन भर पेपर ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम करना है आज?
2: शोभा, तुम भी ना, लगता है तुम्हें मेरी छुट्टी का दिन पसंद नहीं है। तभी तो मेरी छुट्टी के दिन आराम करना तुम्हें अखर रहा।
1: क्या बात करते हैं आप भी।
2: नहीं नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहकर तो देखो।
1: मुझे क्या पड़ी है आपको छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेजूं। मैं तो ये कह रही थी कि बाजार वगैरह चलना है क्या, कुछ सामान खरीदना है कि नहीं?
2: तो ऐसा क्यों नहीं कहती तुम?
1: चलो, आपके समझ में आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है।
2: ओहो, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता?
1: मेरा ये मतलब नहीं था।
2: फिर
1: आपकी समझदारी तो बहुत अच्छी है जिसमें सब कुछ जल्दी समझ आता है ना।
2: तुम्हारे लाडले संकेत के समझ में भी कुछ नहीं आता।
1: हाय, अब क्या किया है उसने?
2: अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर उसे कुछ करने में समय ही कितना लगता है। अब उस दिन की बात ले लो, क्या जरूरत थी संकेत को पंडित जी की लड़की को छेड़ने की? क्यों छेड़ा था उसने?
1: आप भी कमाल करते हैं। अरे, उसने लड़की को कहाँ छेड़ा था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो लड़की बता सकती है या फिर हमारा बेटा संकेत, कि उसने पंडित जी की लड़की को क्यों छेड़ा था।
2: तुम भी ऐसे कह रही हो जैसे संकेत ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों, अरे उसकी अकल में ये बात कब आएगी कि उसकी खुद की भी एक जवान बहन है?
1: मुझे नहीं लगता कि संकेत अब ऐसा कुछ करेगा। अब कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, यार दोस्तों में रहते हैं तो कुछ मस्ती मजाक कर लेते हैं।
2: अब जवानों की मस्ती मजाक का क्या यही साधन बचा है कि किसी की बेटी को छेड़ा जाए?
1: अब छोड़ो भी, जो हो गया उस पर छोड़ो उसे। मैंने संकेत को भी समझा दिया है, वो अब ऐसा नहीं करेगा बस।
2: अब वो भले ही ऐसा ना करे, लेकिन जो वो कर चुका है पंडित जी की लड़की के साथ बदतमीजी, क्या वो कोई गर्व करने लायक कारनामा है उसका? क्या उससे नाक ऊंची हो गई हमारी?
1: आप भी क्या बात करते रहते
2: मैं
1: हैं?
2: वही बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लाडले ने हमारी इज्जत धूल में मिला दी।
1: अरे क्या बात करते हैं आप, किसी की लड़की को छेड़ देने से अगर अपनी इज्जत धूल में मिल जाए करती है तो फिर किसी की लड़की को लेकर भाग जाने से क्या इज्जत बढ़ जाती है और नाक ऊंची हो जाती है?
2: किसकी बात कर रही हो तुम?
1: वो मोड़ वाले जगन्नाथ जी की। आखिर उनका लड़का तो सक्सेना जी की लड़की को लेकर भाग गया, मगर फिर भी वो तो सर उठाए घूमते हैं ना।
2: तुम औरतों में यही आदत सबसे बेकार होती है।
1: कौन सी आदत होती
2: यही?
1: है?
2: यही, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को बताना। तुम क्या समझती हो, क्या दूसरे की गलती बताने से अपनी गलती छिप जाती है?
1: मैं अपनी गलती छिपा नहीं रही हूँ, मैं तो दूसरों की बात बता रही हूँ बस।
2: ये आदत बंद कर दो तुम, इससे ही हमारे बच्चों को शह मिली है और वे यही सोचकर गलत काम को निसंकोच करते हैं कि दूसरे भी तो ऐसा ही करते हैं। वो तो गनीमत समझो कि मैंने संकेत से उस लड़की को माफ़ी मांगने को कहा तो वो राज़ी हो गया, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी और पंडित जी की लड़की दोनों ने ही संकेत को क्षमा कर दिया, वरना अगर वे लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते तो हमारी इज्जत क्या रह जाती?
1: ये बात तो सच है, बेचारे पंडित जी बहुत ही सज्जन आदमी हैं, वरना उनकी जगह कोई दूसरा होता तो संकेत को तो क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी।
2: वही तो ये तो पंडित जी की सज्जनता ही थी जो उन्होंने संकेत को क्षमा कर मामले को ठंडा कर दिया, वरना उनकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करके ही मानता।
1: अब यहाँ भी देख लो, आप में और पंडित जी में कितना अंतर है।
2: अब आदमी आदमी में स्वभाव का फर्क तो होता ही है। चलो तुम्हारे बाजार का क्या काम है निपटा देते हैं।

0: अच्छा, शुक्ला भाई साहब, नमस्कार, आइए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: भाभी,
0: भाभी,
1: नमस्कार। कहाँ है श्रीवास बाबू?
0: अंदर है ना, आइए। अरे अरे, जूते चप्पल चलेंगे, ऐसे ही आ जाइए आप तो।
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: क्या हो गया श्रीवास बाबू? सुना था 2 दिन आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे।
3: हाँ, रहना पड़ा शुक्ला जी।
1: अब कैसे हैं आप?
3: अब तो ठीक हूँ शुक्ला जी, ईश्वर की दया है।
0: वो तो बच गए भाई साहब, वरना न जाने क्या हो जाता।
1: आखिर हुआ क्या था बहन जी?
2: कोई बड़ी बात हो गई थी।
0: अब बड़ी घटना ही समझो। हुआ ये था कि हमारी बेटी पलक को एक लड़के ने छेड़ दिया, फिर वह अक्सर पलक को परेशान करने लगा था। तब पलक ने इनको बताया ये सब। जब लड़के को इनको पता हो जाने के बारे में पता चला, तो वो आकर पलक और इनसे माफी मांग रहा था। पलक और मैं तो उसे क्षमा कर देने के पक्ष में ही थे भाई साहब,
1: हाँ, ऐसी बातों को तुरंत निपटा लेना चाहिए।
0: मगर ये उस लड़के को क्षमा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये तो इतने गुस्से में भरे थे कि सीधे थाने जाकर ही सांस ली और उस लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
2: हे भगवान,
0: फिर क्या, लड़की का मामला था भैया। फिर इन्होंने अपने विधायक से भी थाने पर फोन करवाया था और पुलिस को उस लड़के को हवालात में बंद करना ही पड़ा था।
1: फिर लड़के वालों ने क्या कहा?
0: अरे, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इनसे ये कहा कि आपके लड़के ने भी तो पंडित जी की लड़की को दोस्तों के साथ मिलकर छेड़ा था, और आपके लड़के की लड़की और उसके बाप से क्षमा मांगने पर उन दोनों बाप बेटी ने भी तो आपके लड़के को माफ कर दिया था ना, तो आप भी बच्चे की गलती समझकर भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उसे।
2: हाँ, और क्या, किस किस से बुराई लेना।
0: यही मैंने भी समझाया था इन्हें, मगर ये किसी की सुने तब ना, ये नहीं माने। इन्होंने उस लड़के को क्षमा नहीं किया और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उस लड़के को पुलिस से पिटवा कर हवालात में बंद करवा दिया था इन्होंने।
2: ओ,
0: जब लड़के के मामा को ये सब पता चला, तो 3 दिन पहले उसने इनको सड़क पर रोक लिया था और उन्हें संकेत के माफी मांगने और माफ कर दिए जाने की बात याद दिलाई थी। फिर इनसे पूछा कि क्या ऐसी क्षमा ये उसके भांजे को नहीं दे सकते थे। जब इनके बच्चे को किसी ने क्षमा कर दिया, तो क्या ये भी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? क्यों राधा?
1: बिल्कुल कर सकते थे।
0: बस इसी बात पर लड़के के मामा और उसके साथियों ने इनकी पिटाई करवा दी। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा इन्हें, नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ और कैसी कैसी चोटें आती इनको।
1: बुरा मत मानना श्रीवास बाबू, अगर आपके बेटे को किसी ने क्षमा कर दिया था तो आपको भी उस लड़के को माफ कर देना था, मगर आपने ऐसा न करके उसे हवालत की हवा खिला दी।
2: ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, कि आप किसी को माफ करेंगे तो आपको भी कोई माफ करेगा।
1: हाँ, अगर आप किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी गलती पर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्षमा मिली है तो आप भी किसी को क्षमा कीजिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली बात है।
0: यही बात मैंने भी कही थी इनसे, मगर ये नहीं माने। पर शायद अब तो इनको भी सबक मिल गया होगा और अब ये भी यही करेंगे, क्यों जी?
3: बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा के बदले क्षमा में ही यकीन रखता हूँ।
4: क्षमा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे

0: दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को।

0: और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू।

0: में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनु

0: पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ 20वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले कनान स्त्री के जीवन पर चिंतन करते हुए विनम्रता एवं दृढ़ता के सद्गुणों को बढ़ाने का संदेश दिया।
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
0: कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में पोप लियो 14वें ने कुंवारी मरियम के स्वर्गोद ग्रहण महापर्व के दूसरे दिन अर्थात वर्ष के 20वें रविवार को विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने उस दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
0: कल हमने कुंवारी मरियम का अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के संग अटूट संबंध पर चिंतन किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी व्यक्ति के शरीर एवं आत्मा की एकता को नहीं तोड़ पाई, जो अनंत जीवन है। हर रविवार यीशु का अनुसरण करने वालों के लिए इसी परिपूर्णता की याद दिलाती है।

0: का पुनरुत्थान हमारे लिए अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमें नए जीवन से पोषित करता है। संत पापा ने कहा, हम आज इसे कनाने स्त्री में पाते हैं जो सुसमाचार पाठ की मुख्य पात्र हैं। यद्यपि वह चुनी हुई प्रजा में से नहीं थी और एक परदेशी भूमि में रहती थी, तथापि वह निरंतर यीशु से बात करने की चाह रखती थी। एक शिष्य की भांति वह उनका अनुसरण करती थी, मानो उसका पहले से उनके साथ एक संबंध रहा हो। शायद उनकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, फिर भी एक आश्चर्यजनक रूप में विश्वास उसके हृदय में जड़ जमा चुका था। वह अपने लिए किसी भी चीज़ की कामना नहीं करती है, लेकिन वह अपनी पीड़ित बेटी के लिए शांति की चाह रखती है। वह अपना विश्वास यीशु पर समर्पित करती है। वह उनमें मुक्तिदाता को पहचानती है जो दाऊद के उत्तराधिकारी हैं। पोप ने आगे कहा कि सुसमाचार लेखक नारी के द्वारा सामना किए जाने वाले मुश्किलों को नहीं छिपाते हैं। शिष्यगण उसे एक मुसीबत की जड़ स्वरूप देखते हैं और स्वयं यीशु भी उसके निवेदन की अनदेखी करते हैं। वास्तव में प्रभु उस प्रांत में गए जैसे कि वे दूसरे समय में प्रार्थना करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज करते थे और अपने शिष्यों को निर्देश देते थे। उस क्षण यद्यपि आशा के परे घटना घटी, इस पर चिंतन करते हुए हम यीशु की आज्ञाकारिता को समझ सकते हैं जिससे वे अपनी प्रेरिताएं में पूरी करते हैं, जहां वे अपने को उन बातों से प्रभावित होने देते जिन्हें वे सुनते और देखते हैं। अंततः वे उस नारी से कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। संत पापा ने कहा कि आज भी कलीसिया अपने आप को ईश्वर के कार्यों से आश्चर्यचकित पाती है और ख्रिस्त की शांति को सीमांतों तक ले जाती है। हम उनकी प्रेरिताई में दिव्य कृपा के पूर्वाभास को पाते हैं जो हमारे अंतःकरण की गहराई में कार्य करती, जिससे हर मिलन में, यहाँ तक कि वे भी जो हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करते, हम अपनी आँखों और हृदयों को सतर्कता में खोलते हुए ईश्वर की आवाज़ को सुनते हैं जिससे वे हमें बतलाना चाहते हैं। हम कनान स्त्री से विनम्रता एवं दृढ़ता की बात सीखते हैं। हम उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि ईश्वर की मेज सबों के लिए बिछाई गई है और कोई भी केवल चून पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पिता के पास हर एक का अपना स्थान होता है। विश्वास की ज्योति में असमानता, अन्याय और रोड़े जो ईश्वर के बहुत से पुत्र और पुत्रियों के सम्मान को कुचलते हैं, अपने में असहनीय होता है। अतः संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम मुश्किल दुनिया में यीशु ख्रिस्त की कलीसिया हैं जो शांति की खोज करती है। हम माता मरियम हमारी माता से निवेदन करें कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि उनके होठों से हम सबसे शक्तिशाली एवं अति नवीनता के भजन ईश महिमा की घोषणा पाते हैं। यह उस व्यक्ति का भजन बनता है जो ईश्वर की आंखों से वास्तविकता को देखता है। यही कारण है कि वह आशा और करुणा के कार्य से निराश नहीं होता। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने फिर एक बार वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ बार बार होने वाली हिंसा को खत्म करने की अपील दोहराई। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी एक जोरदार अपील की कि दो राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो, ताकि एक न्याय संगत एवं स्थायी शांति बहाल हो सके। पोप लियो यह लगातार दोहराते रहे हैं कि सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा आधारित दो राष्ट्र समाधान पौत्रभूमि में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र सही और संतुलित रास्ता है। जैसा कि महाधर्मदर्श गैब्रियल कच्चा ने जुलाई 2025 में यूएन को दिए एक भाषण में कहा था, उसी साल बाद में संयुक्त राष्ट्र में वैटिकन के उस समय के स्थायी पर्यवेक्षक ने वैटिकन के इस विचार को

0: दोहराया था कि इसराइल एवं फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर के अंदर शांति एवं सुरक्षा के साथ मिलकर रहना चाहिए, और उन्होंने बतलाया कि असली एवं स्थायी तरक्की सिर्फ बहुपक्षीय धैर्यपूर्ण बातचीत और सबों को साथ लेकर चलने वाले सहयोग से ही हो सकती है, न कि ताकत के इस्तेमाल से। अपने देवदूत प्रार्थना के संदेश में पोप लियो ने भूमध्य सागर खेल की शुरुआत को भी याद किया, जो एक बहु खेल इवेंट है जिसमें भूमध्य सागर से सटे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस साल के खेल दक्षिणी इटली के तारांतो शहर में आयोजित है। वैटिकन का आधिकारिक खेल संघ एथलेटिका वतिकाना भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, जिसमें 4 खिलाड़ी भाग लेंगे। पोप ने उम्मीद जताई कि ये खेल इस इलाके और पूरी दुनिया के लोगों के बीच शांति और भाईचारे का एक नबी के भविष्यवाणी का संकेत होगा। और अंत में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का भी वादन करते हुए पोप लियो ने पोलैंड के अपर सिलेसिया इलाके में पिए क्रिसलोस के तीर्थस्थल पर महिलाओं की पारंपरिक तीर्थयात्रा में शामिल विश्वासियों का विशेष अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: या तुत्ती वोई, आगुरो उना बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें को शनिवार 15 अगस्त की सुबह इंडोनेशिया के पूर्वी नुस्का तेंगारा इलाके में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुई तबाही के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अभी तक मरने वालों की संख्या 53 हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्लोरेंस आइलैंड के एंडे धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष पौलुस बुडी एसवीडी को भेजे गए एक टेलीग्राम में, जिस पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन के हस्ताक्षर हैं, संत पापा ने इस आपदा के लगातार असर झेल रहे लोगों, खासकर बेघर हुए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक एकजुटता और करीबी का भरोसा दिया। संत पापा ने कलीसिया और नागर अधिकारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे मानवीय मदद देना जारी रखे हुए हैं और बचाव के काम में लगे आपातकाल कर्मचारियों के लिए प्रार्थना की। अंत में संत पापा ने मरे हुए लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया के सुपुर्द किया और दिव्य आशीर्वाद और सामर्थ्य की दुआ की। विदित हो कि शनिवार को फ्लोरेंस आइलैंड पर 7.7

7 मैग्नीट्यूड का पहला जोरदार भूकंप आया और उसके बाद पूरे दिन कई झटके आए। कुछ घंटों बाद सुमात्रा आइलैंड पर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जान माल के नुकसान के अलावा भूकंपों से घरों और संरचनाओं को भी बहुत नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक भूकंप से 900 से ज्यादा घर तबाह हो गए और करीब 450 दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 5000 लोगों को अस्थायी टेंटों में पनाह लेनी पड़ी। हजारों लोगों ने तेज झटकों के डर से रात बाहर बिताई। स्कूल, हेल्थ सेंटर और गिरजाघरों समेत कम से कम 167 पब्लिक जगहों को नुकसान पहुंचा। और संत पापालियो 14वें ने मोंटेरी, मैक्सिको में हो रहे तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले युवाओं को याद दिलाया कि हमारे जीवन का मकसद खुद को यीशु से जोड़ना है और इस तरह उनके जीवन में हिस्सा लेकर उस पवित्रता को पाना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा लियो 14वें ने 15 और 16 अगस्त को मोंटेरी, मैक्सिको में होने वाले तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस के मकसद के बारे में बताया, जो उन्होंने इसके आयोजकों और प्रतिभागियों को अपना संदेश भेजा था। वाटिकन प्रेस ऑफिस ने शनिवार शाम को यह संदेश प्रकाशित किया। संत पापा ने युवाओं से मसीह के साथ चलने और मुलाकात के विषय के अनुसार पवित्रता की चाहत रखने की अपील की, जो याद दिलाता है कि मसीह हमसे खुद कहते हैं, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ हो। योहन 15:27। इस बात पर ध्यान रखते हुए संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे इन शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कितना जरूरी है कि सिर्फ ख्रीस्त के साथ मिलकर ही हम दुनिया को उन पर विश्वास करने में मदद कर सकते हैं, भले ही आप अपने आसपास हिंसा, बेपरवाही और लक्ष्य की कमी की वजह से जो परेशानियां देखते हैं उनके बावजूद भी। अंत में संत पापा ने उन्हें रुकने और चुपचाप समय बिताने के लिए कहा ताकि वे यह समझ सकें कि सच में क्या उचित है। उन्होंने कहा, इस तरह स्वामी के साथ मिलकर आप अपने गवाह और आशा की निशानी बन पाएंगे। संत पापा लियो ने अपने संदेश के अंत में युवाओं को इस दिन खुशी खुशी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंप दिया। और यरूशलेम के लैटिन प्रादिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला फिलिस्तीन के आखिरी बचे ख्रिस्तीय गांव तैबेह का दौरा कर रहे हैं। चूंकि गांव में आने जाने पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, आपका उदाहरण जरूरी है ताकि हम इस बहुत मुश्किल हालात में भी ख्रिस्तीय आवाज बने रह सकें। हम यहाँ हर स्तर पर पवित्र भूमि में कलीसिया की मौजूदगी बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने वेस्ट बैंक के छोटे से ख्रिस्तीय गांव तैबेह के दौरा के समय धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण के त्योहार पर वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तैबेह में मुक्तिदाता ख्रिस्त लैटिन गिरजाघर में पवित्र मिस्सा के दौरान कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने कहा, हो सकता है कि मेरे पास इंसानी और दुनियावी स्तर पर जवाब ना हो, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है कि उनमें हम यहाँ तैबेह में भी जीवन ला सकते हैं। पवित्र मिसा की शुरुआत में कार्डिनल पियर बत्तीस्ता का स्वागत करते हुए तैबेह की पल्ली पुरोहित फादर बशर ने कहा कि गांव ने उनका अपने लोगों के बीच और अपने घर में स्वागत किया है। कार्डिनल पिज्जाबाला की मौजूदगी ने समुदाय को याद दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और कलीसिया अपने बच्चों के साथ खड़ी है, अपने साथ इस देश का क्रूस और उम्मीद लेकर चलती है। कार्डिनल पिज्जाबाला ने धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण त्योहार को पुनरुत्थान का फल बताया और कहा कि माता मरिया ख्रिस्तियों को इंसानी हिसाब किताब के बजाय असलियत को दिव्य नजरों से देखना सिखाती है।
कार्डिनल पिज्जाबाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि ख्रिस्तीय मौजूदगी को बनाए रखने के लिए डर, निराशा और मुश्किल हालात के असर से दिल की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन हम एक ऐसा समुदाय बने रहना चाहते हैं

जो जिंदगी को जन्म दे, अपने हक, जिंदगी के हक को छोड़े बिना। इसलिए हिम्मत रखें, डरे नहीं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में रूस के नए हमलों के बारे में बताया। इस हफ्ते यूक्रेन के 13 इलाकों पर 1,550 से ज्यादा ड्रोन, करीब 1,560 निर्देशित हवाई बम और 62 मिसाइलों से हमला किया गया, जिनसे यूक्रेन के शहरों और समुदायों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। रूसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां भी पहुंच पाते हैं, वे रिहायशी भवनों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिहिबा ने आबादी में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों पर चिंता जताई। अकेले जुलाई में रूस ने पूरे यूक्रेन में कम से कम 437 आम लोगों को मार डाला और 2,610 लोगों को घायल कर दिया है। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर

0: पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ 20वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले कनाने स्त्री के जीवन पर चिंतन करते हुए विनम्रता एवं दृढ़ता के सद्गुणों को बढ़ाने का संदेश दिया।
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
0: कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में पोप लियो 14वें ने कुंवारी मरियम के स्वर्गोद ग्रहण महापर्व के दूसरे दिन अर्थात वर्ष के 20वें रविवार को विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने उस दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
0: कल हमने कुंवारी मरियम का अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के संग अटूट संबंध पर चिंतन किया, यहाँ तक कि मृत्यु भी व्यक्ति के शरीर एवं आत्मा की एकता को नहीं तोड़ पाई, जो अनंत जीवन है। हर रविवार यीशु का अनुसरण करने वालों के लिए इसी परिपूर्णता की याद दिलाती है। उनका पुनरुत्थान हमारे लिए अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमें नए जीवन से पोषित करता है। संत पापा ने कहा, हम आज इसे कनाने स्त्री में पाते हैं, जो सुसमाचार पाठ की मुख्य पात्र हैं। यद्यपि वह चुनी हुई प्रजा में से नहीं थी और एक परदेशी भूमि में रहती थी, तथापि वह निरंतर यीशु से बात करने की चाह रखती थी। एक शिष्य की भांति वह उनका अनुसरण करती थी, मानो उसका पहले से उनके साथ एक संबंध रहा हो। शायद उनकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी, फिर भी एक आश्चर्यजनक रूप में विश्वास उसके हृदय में जड़ जमा चुका था। वह अपने लिए किसी भी चीज की कामना नहीं करती है, लेकिन वह अपनी पीड़ित बेटी के लिए शांति की चाह रखती है। वह अपना विश्वास यीशु पर समर्पित करती है। वह उनमें मुक्तिदाता को पहचानती है, जो दाऊद के उत्तराधिकारी हैं। पोप ने आगे कहा कि सुसमाचार लेखक नारी के द्वारा सामना किए जाने वाले मुश्किलों को नहीं छिपाते हैं। शिष्यगण उसे एक मुसीबत की जड़ स्वरूप देखते हैं और स्वयं यीशु भी उसके निवेदन की अनदेखी करते हैं। वास्तव में प्रभु उस प्रांत में गए, जैसे कि वे दूसरे समय में प्रार्थना करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज करते थे और अपने शिष्यों को निर्देश देते थे। उस क्षण यद्यपि आशा के परे घटना घटी, इस पर चिंतन करते हुए हम यीशु की आज्ञाकारिता को समझ सकते हैं, जिससे वे अपनी प्रेरिताएं में पूरी करते हैं, जहां वे अपने को उन बातों से प्रभावित होने देते जिन्हें वे सुनते और देखते हैं। अंततः वे उस नारी से कहते हैं, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। संत पापा ने कहा कि आज भी कलीसिया अपने आप को ईश्वर के कार्यों से आश्चर्यचकित पाती है और ख्रिस्त की शांति को सीमांतों तक ले जाती है। हम उनकी प्रेरिताई में दिव्य कृपा के पूर्वाभास को पाते हैं, जो हमारे अंतःकरण की गहराई में कार्य करती, जिससे हर मिलन में, यहाँ तक कि वे भी जो हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करते, हम अपनी आँखों और हृदयों को सतर्कता में खोलते हुए ईश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जिससे वे हमें बतलाना चाहते हैं। हम कनान स्त्री से विनम्रता एवं दृढ़ता की बात सीखते हैं। हम उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि ईश्वर की मेज सबों के लिए बिछाई गई है और कोई भी केवल चून पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पिता के पास हर एक का अपना स्थान होता है। विश्वास की ज्योति में असमानता, अन्याय और रोड़े, जो ईश्वर के बहुत से पुत्र और पुत्रियों के सम्मान को कुचलते हैं, अपने में असहनीय होता है। अतः संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम मुश्किल दुनिया में यीशु ख्रिस्त की कलीसिया हैं, जो शांति की खोज करती है। हम माता मरियम हमारी माता से निवेदन करें कि वे हमारी मध्यस्थता करें, क्योंकि उनके होठों से हम सबसे शक्तिशाली एवं अति नवीनता के भजन ईश महिमा की घोषणा पाते हैं। यह उस व्यक्ति का भजन बनता है जो ईश्वर की आंखों से वास्तविकता को देखता है। यही कारण है कि वह आशा और करुणा के कार्य से निराश नहीं होता। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nuntiavit Mariae,
2: et concepti de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने फिर एक बार वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ बार बार होने वाली हिंसा को खत्म करने की अपील दोहराई। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी एक जोरदार अपील की कि दो राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो ताकि एक न्याय संगत एवं स्थायी शांति बहाल हो सके। पोप लियो यह लगातार दोहराते रहे हैं कि सुरक्षित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा आधारित दो राष्ट्र समाधान पौत्रभूमि में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र सही और संतुलित रास्ता है, जैसा कि महाधर्मदर्श गैब्रियल कच्चा ने जुलाई 2025 में यूएन को दिए एक भाषण में कहा था। उसी साल बाद में संयुक्त राष्ट्र में वैटिकन के उस समय के स्थायी पर्यवेक्षक ने वैटिकन के इस विचार को दोहराया था कि इसराइल एवं फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बॉर्डर के अंदर शांति एवं सुरक्षा के साथ मिलकर रहना चाहिए, और उन्होंने बतलाया कि असली एवं स्थायी तरक्की सिर्फ बहुपक्षीय धैर्यपूर्ण बातचीत और सबों को साथ लेकर चलने वाले सहयोग से ही हो सकती है, न कि ताकत के इस्तेमाल से। अपने देवदूत प्रार्थना के संदेश में पोप लियो ने भूमध्य सागर खेल की शुरुआत को भी याद किया, जो एक बहु खेल इवेंट है जिसमें भूमध्य सागर से सटे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस साल के खेल दक्षिणी इटली के तारांतो शहर में आयोजित है। वैटिकन का आधिकारिक खेल संघ एथलेटिका वतिकाना भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, जिसमें 4 खिलाड़ी भाग लेंगे। पोप ने उम्मीद जताई कि ये खेल इस इलाके और पूरी दुनिया के लोगों के बीच शांति और भाईचारे का एक नबी के भविष्यवाणी का संकेत होगा। और अंत में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए तीर्थयात्रियों का भी वादन करते हुए पोप लियो ने पोलैंड के अपर सिलेसिया इलाके में पिए क्रिसलोस के तीर्थस्थल पर महिलाओं की पारंपरिक तीर्थयात्रा में शामिल विश्वासियों का विशेष अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: या तुति वोई, आगुरो उना बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें को शनिवार 15 अगस्त की सुबह इंडोनेशिया के पूर्वी नुस्का तेंगारा इलाके में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से हुई तबाही के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अभी तक मरने वालों की संख्या 53 हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्लोरेंस आइलैंड के एंडे धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष पौलुस बुडी एसवीडी को भेजे गए एक टेलीग्राम में, जिस पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन के हस्ताक्षर हैं, संत पापा ने इस आपदा के लगातार असर झेल रहे लोगों, खासकर बेघर हुए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक एकजुटता और करीबी का भरोसा दिया। संत पापा ने कलीसिया और नागर अधिकारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे मानवीय मदद देना जारी रखे हुए हैं और बचाव के काम में लगे आपातकाल कर्मचारियों के लिए प्रार्थना की। अंत में संत पापा ने मरे हुए लोगों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया के सुपुर्द किया और दिव्य आशीर्वाद और सामर्थ्य की दुआ की। विदित हो कि शनिवार को फ्लोरेंस आइलैंड पर 7.7 मैग्नीट्यूड का पहला जोरदार भूकंप आया और उसके बाद पूरे दिन कई झटके आए। कुछ घंटों बाद सुमात्रा आइलैंड पर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जान माल के नुकसान के अलावा भूकंपों से घरों और संरचनाओं को भी बहुत नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक भूकंप से 900 से ज्यादा घर तबाह हो गए और करीब 450 दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 5,000 लोगों को अस्थायी टेंटों में पनाह लेनी पड़ी। हजारों लोगों ने तेज झटकों के डर से रात बाहर बिताई। स्कूल, हेल्थ सेंटर और गिरजाघरों समेत कम से कम 167 पब्लिक जगहों को नुकसान पहुंचा। और संत पापा लियो 14वें ने मोंटेरी, मैक्सिको में हो रहे तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले युवाओं को याद दिलाया कि हमारे जीवन का मकसद खुद को यीशु से जोड़ना है और इस तरह उनके जीवन में हिस्सा लेकर उस पवित्रता को पाना है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा लियो 14वें ने 15 और 16 अगस्त को मोंटेरी, मैक्सिको में होने वाले तीसरे राष्ट्रीय युवा दिवस के मकसद के बारे में बताया, जो उन्होंने इसके आयोजकों और प्रतिभागियों को अपना संदेश भेजा था। वाटिकन प्रेस ऑफिस ने शनिवार शाम को यह संदेश प्रकाशित किया। संत पापा ने युवाओं से मसीह के साथ चलने और मुलाकात के विषय के अनुसार पवित्रता की चाहत रखने की अपील की, जो याद दिलाता है कि मसीह हमसे खुद कहते हैं, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ हो। योहन 15:27। इस बात पर ध्यान रखते हुए संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे इन शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कितना जरूरी है कि सिर्फ ख्रीस्त के साथ मिलकर ही हम दुनिया को उन पर विश्वास करने में मदद कर सकते हैं, भले ही आप अपने आसपास हिंसा, बेपरवाही और लक्ष्य की कमी की वजह से जो परेशानियां देखते हैं उनके बावजूद भी। अंत में संत पापा ने उन्हें रुकने और चुपचाप समय बिताने के लिए कहा, ताकि वे यह समझ सकें कि सच में क्या उचित है। उन्होंने कहा, इस तरह स्वामी के साथ मिलकर आप अपने गवाह और आशा की निशानी बन पाएंगे। संत पापा लियो ने अपने संदेश के अंत में युवाओं को इस दिन खुशी खुशी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ग्वादालूपे की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंप दिया। और यरूशलेम के लैटिन प्रादिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर 32 तापिज्जा बाला फिलिस्तीन के आखिरी बचे ख्रिस्तीय गांव तैबेह का दौरा कर रहे हैं। चूंकि गांव में आने जाने पर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, आपका उदाहरण जरूरी है ताकि हम इस बहुत मुश्किल हालात में भी ख्रिस्तीय आवाज बने रह सकें।
हम यहाँ हर स्तर पर पवित्र भूमि में कलीसिया की मौजूदगी बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने वेस्ट बैंक के छोटे से क्रिस्तीय गांव तैबे के दौरा के समय धन्यकुमारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रहण के त्योहार पर वहां के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। तैबे में मुक्तिदाता ख्रिस्त लैटिन गिरजाघर में पवित्र मिस्सा के दौरान कार्डिनल पियर बत्तीस्ता ने कहा, हो सकता है कि मेरे पास इंसानी और दुनियावी स्तर पर जवाब ना हो, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है कि उनमें हम यहाँ तैबेह में भी जीवन ला सकते हैं। पवित्र मिसा की शुरुआत में कार्डिनल पियर बत्तीस्ता का स्वागत करते हुए तैबेह की पल्ली पुरोहित फादर बशर ने कहा कि गांव ने उनका अपने लोगों के बीच और अपने घर में स्वागत किया है। कार्डिनल पिज्जा बाला की मौजूदगी ने समुदाय को याद दिलाया कि वे अकेले नहीं है और कलीसिया अपने बच्चों के साथ खड़ी है, अपने साथ इस देश का क्रूस और उम्मीद लेकर चलती है। कार्डिनल पिज्जा बाला ने धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग उद्ग्रह

और 62 मिसाइलों से हमला किया गया, जिनसे यूक्रेन के शहरों और समुदायों को निशाना बनाया गया, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। रूसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां भी पहुंच पाते हैं वे रिहायशी भवनों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिहिबा ने आबादी में बड़े पैमाने पर हो रही मौतों पर चिंता जताई। अकेले जुलाई में रूस ने पूरे यूक्रेन में कम से कम 437 आम लोगों को मार डाला और 2610 लोगों को घायल कर दिया है। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।